0: ஆர் தக்கோ அங்கேரி ஜோ ஆர் தக்கோ চোখের চমক দেখো নাচের ঢং দেখো রূপ দেখো অঙ্গ দেখো নাচ দেখো
1: আরে বাহ রে বাহ রে বাহ